गुर के चरण तोए तोए पीवा, धर्मां दे ठाडी दरबार, कुछ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल के वार। सुख होटल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए।

0: संख जाप संख भाऊ संख पूजा संख तप ताऊ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मंडली उदास
0: संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती असंख दातार
1: असंख सूर मोपकार असंख मोले बुलाए तार
0: कुदरत कवन कहा विचार वारण जावा एक बार
1: ज्योतित पावे साईं कलिकार तू सदा सलामत रहंकार
0: संख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर
1: असंख अमर कर जाए जोर संख गलवड हत्या कमाए
0: संख पापी पाप कर जाए संख कूड़े और कूड़े फिराए
1: असंख मलेच्छ मल पखाए असंख निंदक सिर करे पार
0: नानक नीच कह विचार वारण जावा एक बार
1: ज्योतित पावे साईं कलिकार तू सदा सलामत निरंकार
0: संख नाव संख थाव गम गम संख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गा
0: अखरी लिखन बोलन बान अखरा सर संजोग बखान
1: जिने लिखे तिसे नाहे जे फरमाए तिप त्रिपाए
0: गीता गीता देता नाउ बिन नावे नाहीं को थाउ
1: कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक बार
0: तो भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार।

0: सावन
1: गति सती संतोखी गावे वीर करारी
0: गावन पंडित पड़ रखी सरे जुग जुग वेदा लाले
1: गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पायाले
0: गावे रतन पाए तेरे हट शक्ति रतनाले
1: गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे
1: हे तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले
0: और केते गावन से में चितन आवन नाने क्या बिचारे
1: सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिनु पाई
0: कर वेखे कीता अपना जिते सी बढ़ियाई
1: भावे सोई कर सी हुकम न करना जाई
0: सो पास साहो साहा पास साहेब नानक रहन जाई
1: मंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान करें भूत
0: किंथा काल कुआरी काया जुगत नडा प्रतीत
1: आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाथ
1: ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजे नाद
0: आप नाथ नाथी सब जाकी रिज सिद्धवरा साध
1: जोग जोग दो एकार चलावें लिखे आवें भाग
0: आदेश से

0: लांगनम बनाने कलांकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे
1: नमो जोगजगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजगजेश्वरं परम विद्धे
0: नमो शास्त्र वाणी नमो वास्त्र वाणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते नमो जोगजगेश्वरं परम विद्धे
0: नमत नारायण गुरु कर्मे नमो प्रेता प्रे देव सुतर में
1: नमो रोग हता नमो राग रूपे नमो
0: नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोग नमस्तम शनाने
1: सदा सर्वदा
0: नाम सर्वं परनाशिन उपि रूपे समस्तल निवासी
1: सदा
0: परम परमेश्वर पालन सदा

0: रंग जाके जात पातन नाम आप रूप मी कान उस्तिक पुरख अवधूत भंगनात्म एक पुरख पार
1: सर्वंता
0: परमीत प्राण जाके नित भक्त नित।

0: राजन प्रभंग धर्म तुझे के आशुक भरण सर्वा भरण कारण कुनिंद गुरु जी दहंद है सर्वत्र मान के सर्वत्र दान के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौण सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र
0: हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख के सर्वत्र भूख
0: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पिस
1: सर्वत्र मानिए सदैव वर्तानिए के सर्वत्र जपिए के सर्वत्र तापिए
0: सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: सर्वं कलिमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे
0: वजू आत्मा बल रुजु में सो सलाम है सलिकत मदाम है
1: गनीमत शिखस्ते गरीबल परस्ते बलंगल मकाने जमीन जमाने
0: आत्मा में रुजुल निदान रिपुल जी मर जाए कि यकीन है
1: अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजल निवाद है गनीमल खराज है
0: सुभद्र मुक्त भूत प्रभक्त प्रभ है सुजुक्त सुधा है
1: सदैव अंग स्वरूप है अपेद अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: मस्तो सलाम है सदैव काम निर्वास रूप है गाद अनूप है
1: ओंकार रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे
0: मर्गंदर वाद्य गंजी अगाधि सुभंग सर्वभागे सर्वानुरागी
1: निर्भुक्त स्वरूप है अशुद्ध है अशुद्ध है के नरकन पर नाश है पृथ्वी पर वास है
0: निरुक्त ब्रह्म सदा वंग सदा भोग स्वरूप

0: ृतायक
1: है सर्पायक
0: है
1: सर्वाकृत है कर्ता कर है अवतार
0: है
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो राशन दाशन शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
0: नमो
1: जुग जुदे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पाने अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशा नमो बंक बंके
0: रूपे कृपंगी त्रिकाले

समस्तल प्रणामे समस्तल प्रणाशे अंजन नाम समस्तल निवासी सदा सचदन स्त्रंग प्रणाशी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी चतर चक्रवर्ती चतर चक्र प्रभुते स्वयं सुभंग सर्वदा।

0: गवायो।
1: बास क्यो बिखे आणस बैठ के ऐसे ही ऐसे सब ऐस बतायो।
0: साच कहो सुन लियो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो।
1: काहुले पाहन पूर तरयो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो।
0: काहुले

0: ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कभ्यो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाते रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा।
0: हमरे दोस्त

0: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे।
1: सच्चा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया।
0: कर सात सुख मन आए बसे आज ने इच्छा सा पूजाईया।
1: सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया ए वडियाईया।
0: कहे नानक सुनो संत हो शब्द तर हुपे आरो, साचा नाम मेरा आधारो।
1: वाजे पंच शब्द कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया।
0: पंच दूत तुद

0: कहे नानक सदा का बहु ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
0: कह दे कच्चे सुन।

0: से मनियाए।
1: अरे आप अमोलक है भागत न के नानका जिन हर पल्ले पाए।
0: हरास मेरी मन बंजारा, हरास मेरी मन बंजारा, सतगुर ते रास जानी।

शरण तुम्हारी आयो नानके प्रभ साथ अष्टपदी। जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलह तै केवल नाम संग तेरा चलै। जय मुश्किल हो अत भारी अर को नाम किनमाय उधारी। अनकुना चरण करत नहीं तरह अर को नाम कूट पापर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सूख कनेरे। सगल सिष्ट को राजा दुखी यार का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग ते

हर का नाम जन को मुक्त जुगतो, हर के नाम जन को तृप्त भुगतो, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कृष्णाए ब्योग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजा हर हर देवा, हर अर्जन के मालिक जीना, हर तन जन को आ प्रभ दीना, हर अर्जन के ओठ स्थानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन सुमाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भोग करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते वर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर सब नसै, संत का संग विडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ, नाम तुल का शबर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोई सलोक।

अगन माय मत पुराण कनक सहव भरपूम दान नीलिकर्म कर भवासन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निम कर शरीर कटावै तो पीह मैं मैल न जावै।

सूट सुनायू प्याल मोह व्यापे माया जाल वर कृतु सगली जम डन है गोविंद भजन मिंतल नहीं मन हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलया सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हरा नाम रिजय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरै सा संगे ओ मैं शोरै।

साधना की अचर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल हो तो साध संग मल सगली को तो साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग पूज्य प्रभ नेरा साध संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा वरने कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्माय समानी साध के संग गोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हूं तावै साध संग सत मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग मां पुनीता साध संग किस्यो नहीं बैरू साधक संग ना बिगा पैरू साधक संग नहीं को मंदा साध संग जाने पर मनंदा साधक संग नहीं हो तापू साधक संग तरजे सा बापू आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आय साधक संग ना कतम बुहू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्ते गोचर लह साधु के संग अजर सह साधक संग बस थन उच्चै साधु के संग मैल पूछै साधक संग दृढ़ सब धर्मो साधक संग केवल पार ब्रह्मो साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु क्या कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साध मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो तन पावै जस तन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सो बसुदेवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गमो नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं किश काल दर्शन पेट तो निहाल साधक संग लूक तहर है साध कै संग नरक पर हर है साध के संग यहां सुहेला साध संग बिशरा तर मेला जो सोई फल पावै साधक संग नम्रता जावै पार ब्रह्म साध रिद बस है नानक उदरे साध सुन रसै साधक संग सुनो अरनाओ साध संग अर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सरपण निस्तरै साधु के संग लगे साधक संग लगे प्रे मीठा साधु के संकट कडीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साधक संग मिट सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधकी महिमा बेद न जानै जेता सुने तेता बखियान साधकी उपमा ते गुण ते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साधकी शोभा उच्ची उच्ची साधकी शोभा मूझते मूची।

ब्रह्म गणेश धर निर्लोभ जैसे जल में कमल अलय ब्रह्म गणेश धर निर्लोभ जैसे सुख सुख ब्रह्म गणी के दृष्टमान जैसे राज राम खोला की तुलपवान ब्रह्म गणी के तीर्थ एक जसु जो बसुदा को देखो चंदन ले ब्रह्म गणी के गुणाओ नानक जो पाओ का सा सुहाओ ब्रह्म गणी निर्मल ते निर्मला जैसे मल नला की जला ब्रह्म गणी के मन हो प्रकाश जैसे तर पर आकाश ब्रह्म गणी के मित्र

कई कोड़ आचार विहारी, कई कोड़ पै तीर्थवासी, कई कोड़ बन भरमे उदास, कई कोड़ वेद के स्रोत है, कई कोड़ तो विसर होते है, कई कोड़ आत्म ध्यानता है, कई कोड़ कब का विचार है, कई कोड़ नव तन नव ध्याव है, नान करते कंतन पाव है, कई कोड़ भय मानी, कई कोड़ तो ज्ञान, कई कोड़ कृपण कठोर, कई कोड़ा भगातम निकोर, कई कोड़ पर द्रव कु कई कोबड़ दुख न करे, कई कोड़ मै सुरमाए, कई कोड़ परदे सुरमाए, जित जित लावो ते जित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोड़ से जति जोगी, कई कोड़ राज रस भोगी, कई कोड़ पंखी स्वरूप आए, कई कोड़ पात्र बिरख निबजाए, कई कोड़ पौन पानी बैसंतर, कई कोड़ दस मंडल, कई कोड़ सचिर सुरन कैतर, कई कोड़ देव दानी दर्शन छात्र, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिन स्तार है, कई कोट राज तम सातक है, कई कोट वेद प्राण समर्थ अरसासत है, कई कोट ग्रह की रतन संबंध है, कई कोट नाना प्रकार जंत है, कई कोट की चर जीव है, कई कोट गिरी मेर संतीव है, कई कोट जख निर्विसाच है, कई कोट भूत प्रय शुकर मृगाच, सब ते निर है, सब ते दूर है, नानक अलग त्रय भरपूर है, कई कोड़ पाताल के वासी, कई कोड़ नरक सुन निवासी, कई कोड़ जन्म जीव मराए, कई कोड़ भोजन नहीं फिरे, कई कोड़ बैठती खाए, कई कोड़ कल थक पाए, कई

नाम संकुन देव लागी कई कुड प्रभु हो जनते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कुड दर्शन प्रभ्यास तिन को मिले प्रभु विनाश कई कुड मंगल सत्संग पार ब्रह्म तिन लाग गलंग जिनको होए सो प्रसाद जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कुड बाणी रखंड कई कुड का सुरमंड कई कोड़े उतारे कई जुगत गिनों विस्तारे कई बार बसुर पासार सदा सदाए कई कंकार कई कोड़ गिने बो पात प्रभु ते ब्रह्म समात ताकांतर जाने गोए आपे आप नान करो सोए कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म परगास कई कोड़ दत्त के वेत सदा नहर को नेत्र कई कोड़ नाम रस भी अमर पै सदी जीव कई को नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह समावे

जिस कह अंतर आजमान सो नरक पातियो सो आन जो जाने मैं जो गुणवान सो तुस्ता का जन आप उसको करवंत कहावे जन मरे भोजन परमावे तन पों काजु करे गुमान सो मूर्खंदा गया कर कृपा जिस के हृदय कृप सावे नानकी मुक्ता के सुख पावे तन मंदावे कर कर पावे तन स्वा का संग न जावे बहुल अस गुरमान को प्रकरे आस पल पितरता का विनाश सब ते आप जने बलवंत किन मैं होए जाए पसमान किसे न बदे आवंकारी धर्म राय ते करे खुआरी गुरु प्रसाद जा कमड़े मान सो जन नानक दर की प्रवान कोट कर्म करे उतारे धर्म पावे सगले विरथारे अंक बस करे अंकार नरक स्वरूप करे फिर अवतार अनुक जतन करे तुम द्रवे हर दर को कैसे कवे आपस को जो भला कहावे तुसे भलाए निपुणिया सर्व करे जा कमन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कस होए तब सुख सुखना ही कोए जावे जाने मैं किस करता तब लै गर्भ जुण मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ने चलना आई ची जब लग मोह मोहन संगमाए तब लग धर्म सजाए राव कृपा दे बंधन टूटे गुरु प्रसाद अणखो झूठे सस कटे लाखुण तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अणक भोग भी क्या की करे न तृप्त आवे खब कमरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मर्थ फिरते सब का

गुण गावस्पद पूरे कुल का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कल्पे एक साथ साथ सुमरो गोविंद मन त्रिकुत रे चंद आसन त्यागो तरंग संजना की दुर्मण मांगे आप छोड़ बेनती करो साथ संग गुण सा कर तरो हर तन के परलोय भंडार नानक गुरु पुरे नमस्कार खेम कुशल सहज नंद साध संग परमन परमानंद नरक निवार उतारो जी गुण गोविंद मृत रस पियो चेचे तो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपा सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमली कलार तुम सुन कुमार तो उधार आप तरह लोक निसार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय सवतनाथ वाजे सुन सुनंद करे प्रभु गाजे प्रगट गोपाल मात के माथे नानक दुरे तन के साथ शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिटके बैर भय सबरे नमृत नाम सत्संग लैन सुप्रसन्न भय गुरदय पूर्ण हो सेव की सहवाल जंजाल भी करते रहते राम नाम सुन सुना कर कर प्रसाद दया प्रभधारी नानक ने विखे हमारी प्रभु की सतगुरु संदमी सावधानी का कर जी सुख मन साज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो निदान सर्व इच्छाता की पूर्ण होय प्रधान पुर गुरु सब लोए सब तेज पाए स्थान पूर्ण होए आन जान हर तन खड़ चले सोए नानक से प्राप्त होए खेम शांत हृद नाम नित बुद्ध ज्ञान बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या ताप जोग तप ध्यान ज्ञान से सुषमशनाम चार पदार्थ कौन प्रकार सब के मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का वेता सुंदर श्री एक दिष्टेत हे फल तिह जन के मुख मणि गुरु नानक नाम वचन मन सुने निधन च पे मन को सब जुग मैं ता की कतो है गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद पाणी सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट पुरा सत्संग मिटे संत कृपा ते जम ते छूटे जाके मस्तक क्रम प्रभाए सा सरनाम ते जिस मन बसे सुन लाए प्रीति जनावे हर पवचीत

गुर सतगुरु गुर सतगुरु सब धन कहो सब धन कहो गुर सतगुरु गुर सतगुरु।

सगल पराशत लाथे मिल साज संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जब पूरन होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब

सब सुहागण माणर लिया एक देवरा मैं अवगण भरपूर शरीरे हम क्यों कर मिला।